0: कम्युनिकेशन से ले रहे हैं
1: लग
0: पर ना भी आवाज भी कैंसल
1: सिंपल
0: सिंपल मैं ना कैंसल सर्विस लोटी